निरंकार निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सत जुगाद सत है भी सत नानक होशी सत।

संतपाओ संत पूजा संत करताओ संत ग्रंथ निर्देश पाप संत योग मन रहन संत भगत ज्ञान विचार संत सती संत दाता संत सूर मोह मत्ता।

वेदानाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खांड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या बिचारे।

आइया। आखण वाला क्या बेचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जैस तू देह तिसै क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिया है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए। रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जे वड आप ते वड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम वसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सनात।

प्यास हर हर नाम मिलै तृपतास है मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा।

सिर सिर रिजिक संभाहे ठाकुर काहे मान पाओ करया। उडे उड आवै सै कोसा तिस पाछै बचरे शरया। तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करया। सब निदान दस अष्ट सिदान।

जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह है हर त्यावह है तुद जी, से जन जुग मैं सुख वासी, से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिनका भउ सब गवासी। जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन

अनेक पढ़ है बहु सिमरत सासत जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो पावह मेरे हर भगवंता। तू आद

रहाओ। नाहौ जति सति नहीं पड़ेया, मूरख मुगदा जन्म पाया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जैन तू नाही विसरया। आशा महला पंजवा, पई परापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत पाज।

ना जान करो प्रत पर हमरे दुष्ट सब तुम काव हो आप हाथ दय मोहे बचाव हो सुखी बस मोर परिवार सेवक सिख सब कर तारा मोर अच्छा निज कर दय करिय सब बैरन को आज संगरिय पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रह प्यासा तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊ जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दाए मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री आस

दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा।

समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानै घट घट के पट पट की जानै जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह अपारा जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ जेते बदन सृष्ट सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम निरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूड काश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज से तज कीनी उत पूज खान बहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट पयो संक्र इकैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संगरो दोष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे पुरख जवन पाग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार त्यै है ताके काल निकट

है आय है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट तर तत् काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मोहरे हो रिद सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाह श्वाय।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मानेओ।

पौड़ी तिथे तू समर्थ जिथे कोए नाहे उथे तेरी राख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाए तेरा छड जाहे पौ जल बिखम असगाहो गुर शब्दी पार पाहे जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे।

जो प्रभु को मिलबो चहे खोज शब्द में राज करेगा खालसा या की रह न ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहे गुरु नाम जहाज है चढ़े सूतरे जो सरदार

धर्म धर्म जुगता निमुख नाहित करता गर्भ गर्भ पढ़े कही ना लिखे जस पेटिए सफल मूरत करै सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत रहो पेख

संगत कलो सिखे माथे जा चुका शब्द कुछ कठिन सी एक्चुअली सानू गीत टाइप जिन्हों का रिदम राइम मिलता वह शब्द ज्यादा गुरबाणी के सारे ही शब्द सानू जरूर विचारने चाहिए ने गाने चाहिए ने इस करके इस शब्द का असी गायन किया। आओ मल्हार की पौड़ी दिखा के तड़ तो आ गया चाहांगे।

कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस ने सतारै, कई कोट राजस तामस सातुक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसासत, कई कोट किए रतन समंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चैर जीवे, कई कोट गिरिमेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जाख्य किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मृगाच, सब ते नेरै सब हूते दूर, नानक आप आलेपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुरग निवासी, कई कोट जन्मै जीवै मरै, कई कोट बहुजो ने फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट कालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह भाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कै हाथे, कई कोट भए बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिन को मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कोट मंगै सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो बिस्थार, कई बार पसर्यो पसार, सदा सदा एक एक ओंकार, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तात के बेते, सदा निहारै एको नेत्रे, कई कोट नाम रास पीवै, अमर भय सद सद ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै, आत्म रस सुख सहज समावै, अपने जन को सास सास समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, सलोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलहारण है, जल थल महियल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, ज्योतिष भावै सोई होग, खिन मैं ताप उथापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहया समाई, प्रभ भावै मनुख गत पावै, प्रभ भावै तां पाथर तरावै, प्रभ भावै बिन शास्ति राखै, प्रभ भावै तां हर गुण पाखै, प्रभ भावै तां पतित उधारै, आप करै आपन बिचारै, दुहां सिरियां का आप स्वामी, खेलै बिगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मनुख ते क्या होयावै, जो तिस पावै सोई करावै, इस कै हाथ होए ता सब किश ले, ज्योतिष भावै सोई करे, अन जानत बिख्या मैं रचै, जे जानत अपना आप बचै, भरमे भूला दह दिस तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै, जा कौ अपनी करै बख्सीस, ताका लेखा न गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिस की रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, ज्योतिष पावै सोई फुन थियो, कबहू ऊंच नीच मैं बसै, कबहू सोग हर करंग हसै, कबहू नींद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावनहार, कबहू निरत करै बहु भांत, कबहू सोए रहै दिन रात, कबहू महाक्रोध बिकराल, कबहू सर्ब की हो तरवाल, कबहू होए बहै बाड़ राजा, कबहू पिखारी नीच का साजा, कबहू आप कीरत में आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यों

प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक ज्यों भरमै परमिया, नाना रूप ज्यों सुहांगी दिखावे, ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै, ज्यो तिस भावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू साध संगत एह पावै, उस अस्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते इक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान। सलोक सुखी बस

0: नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुआन जो जाने मैं जो वनवंत सो होवत बेष्टा का जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूम का जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुकत आगै सुख पावै तनवंता हुए कर गर्भावै तृण समान कश संग ना जावै बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस पल पीतरता का हुए विनाश सब ते आप जन बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत किसे ना बदाए आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटाए अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हों तारे श्रम पावे सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्ब पीरेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जानै मुझते काश होए तब इसको सुख नाही कोए जब ए जानै मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे कु बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राए दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हौ छूटै सहस खटे लख को उठतावै त्रिपत न आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिख्या के करै नह त्रिपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो केश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखै करै बबेक आपे एक आपे अनेक मरै ना बिनसै आवै ना जाए नानक साध ही रहया समाए आप उपदेसै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन बिसथार सब काश उसका ओह करने हार उस ते भिन कहो किश होए थान थनंत्र एकै सोए आपने चाले तो आप करने हार कौतुक करै रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कह न जाए सात सात सात प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अस सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखयाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक संत सरन जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा घटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मैं पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सोभा ते हीन संत के हते कौ रखै न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों न पाए संत कै दुखन त्रिगद ज्यों किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मैं जलै संत कै दुखन सब को शलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए पीहि गत पाहे संत का निंदक महा आतताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखिया अरदीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मह दुख, नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी कौ डान लागे, संत के दुखी कौ सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख ना सुख ते तरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे तन लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी कतै काज ना पहुंचे, संत के दुखी को उद्यान परमाइय, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे तां लए उबार, संत का दुखी इयों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक ई धन त्रापै, संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पाया, नानक जो तिस पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरै ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे ना आशा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत के दुख ना तृष्टै कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत ना मिटै कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब घाट तिसके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करहो दिन रात, तिसे त्या वह सास गिरास, सब काश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा कोथिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक, तजो सियान पसुर जनो, सिमरो हर हर राए, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुक की टेक, वृथि सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लागे आए, मारह रख है एक आप, मानुख कह कृष्णा ही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बेगन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर ले जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसे सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गने संसार, मान तान मोख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पशान है, ए तो उत कियो सोजी जान है, नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिन्ह निरंजन जानया, गुरप्रसाद आपन आप सुझै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्ब रोग ते ओ हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त मैं सोई निर्बान, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसै न लागै दुख, जिस कौ हर प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डोलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किस ते डरे। जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूजिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किश जन्मे नह किश मरे आपन चलित आप ही करे आवन जावन दृष्ट आन दृष्ट आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट आपे आप सगल मैं आप अनक जुगत रच थाप उथाप अभिनाशी नाही किश खंड धारण धार रहो ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सुभावंत सगल संसार उधर तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उधारण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लय कृपाल गुर का शब्द जप पय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनु कृपा करै बड भागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख कौ उत्तम करमान जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए होवै सो होए करणै हार पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निधान उन्हों बान आए आपस कहो आप दिनो मान नानक प्रभ जन एको जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाकै सिमरन उधरी आए नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कछु न होए जे सौ प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरै किश काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सोहै तनवंता होए क्या को गर्भै जं सब केश तिसका दिया दरबै आतसूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए बाहे दातार तिस दिन हर जानै गवार जिस गुर प्रसाद टूटे हौं रोग नानक सो जान सदा आरोग ज्यो मंदर को थामै थमन त्यों गुर का शब्द मनै अस थमन ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास ज्यो महाध्यान मैं मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै तिन संतन की बाशो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइए पुरब लिखे का लिखिया पाइए दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कश करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बस आई तेरे संग लपट रहे ओ रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पात सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद खेप संतै संग चाल अवर त्याग बिखिया जंजाल धन धन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगै सोए एहो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलहारै चरण साध के धोए धोए पियो अर्प साध कहो अपना जियो साध की तूर करो इसनान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वडभागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनक बिघन ते साधु राखै हर गुण गाय अमृत रस चाखै ऊट गही संतै दर आया सर्ब सुख नानक तेह पाया मृतक कौ जी वालन हार भूखे कौ देवत आधार सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे सब किश तिसका ओ करनै जोग तिस बिन दूसर हुआ ना होग जप जन सदा सदा दिन रैणी सब दे ऊच निर्मल एह करनी कर कृपा जिस को नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तेहु लोए जाकै हृदय एको होए सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वरत है साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग केशो त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न तिसै बुझाए नानक जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मै राख मानुक की तू प्रीत ते आग तिसते परै नाही किश कोए सर्ब निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बखसंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जाका नेत्र फूर तिसका मंत्र न जानै होर आनंद रूप मंगल साध जाकै सर्ब थोक सुनिए कर ताकै राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जानै पूत सगल पुरोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जन दे जन दास नाम त्या वैसे तेहो गुण मैं जाको परमाए जन्म मरै फिर आवै जाए ऊंच नीच तिसके अस्थान जैसा जन आवै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै इक रंग नाना बेद कीनो विस्थार प्रभ अविनाशी एकंकार नाना चलित करे खिन माहे पूर रहे ओ पूरन सब ठाए नाना बेद कर बनत बनाए अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खांड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरियां सब भवन नाम कै संग उधरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पाद मैं सो जान गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत तेजन जाकै हृदय प्रवेश सत निरत बूझै जे कोय नाम जपत ताकी गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मेतो गत जिसकी सृष्ट सो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जान किया नानक जो ते सुपावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बूझिया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राच जान रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सब धारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ बक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछानिया जाकै हृदय विश्वास प्रभ आया तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨਾ, ਬਸ ਮਾਹੇ ਲੈ ਬਸ ਗਡਾਈ, ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ। ਬੂਜੈ ਬੂਜਨ ਹਾਰ ਬਵੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਪਾਲਨ ਹਾਰਾ, ਸੇਵਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੁਮਾਰੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪ ਪਤ ਰਾਖੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਉ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ, ਭਾਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕੱਢਤ ਆਪ, ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ, ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਉ ਭਾਂਤ, ਤਿਸ ਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ, ਮਾਰੈ ਨਾ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ, ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੈ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਛ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ, ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ, ਬੋਲਉ ਜਸ ਜਿਹਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ, ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ, ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ, ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ, ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਏਕ ਨ ਜਾਨੋ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਹਜੂਰੇ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓ ਟਲੇ, ਮਨ ਤਨ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ, ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ, ਅਵਰ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲੀ ਛਾਡ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ, ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸਾਧ ਪੈਰਾ, ਸਲੋਕ ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ, ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛੁ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ, ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹ ਕਾਮੇ, ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ, ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸੁਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿ ਜਨ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਏਕੈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ ਭਰਮ, ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਪਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਐ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸ ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਹਿ ਗਵੇ, ਸੁਨ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਘਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਆਓ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, अमृत दृष्ट पेखै हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लय मिलाए जिह बाएक उस्तत अनेक सत पुरख पूरन बबेक काहू बोल न पहुँचत प्राणी आगम अगोचर प्रभ निरबानी निराहार निरवैर सुखदाई ताकी कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करै चरण कमल हृदय सिमरै सद बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का कहे नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन में राख हर हर एक अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तह ते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पाव चूका निरपाव होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिस का सा तिन कृपा तारी साध संग जप नाम मुरारी थेत पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कलाकार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पै प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी
1: साथ ना चाले बिन भजन बिखिया सगली चार हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत बिसारो चरण कमल हृदय में उतार हो करन कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर कहो नाम हर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे

जिस शोभा को करे पली करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हरे अवखद लाए सर्ब निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान मन पर बोधो हर कह नाए दै जिस तावत आवै ठाए ताको बिघन न लागे कोए जाके हृदय बसै हर सोए।

सार पूत सत हर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिनस जाए हो मैं बिक पैल होए अचिंत।

होसी पी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना प्रिया पार सहस सियाण पा लख हो हे ताइक न चलै नाल।

सुने दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाई, जे को कह पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मुह चोटा न खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ से प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म से तीसन बंध,

मन्ने नानक भव है न भिख ऐसा नाम निरंजन हुए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पाव है दर गहमान पंचे सो है दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नहीं सुमार कौल धर्म दया का पूत संतोख ताप रखिया जिन सूत जे को बुझे हुवे सचियार तबले ऊपर केता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया

हुए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद पावै साई फलिका तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख पाऊ असंख पूजा असंख तप ताऊ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षसार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावै साई भलीकार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर कर

जाने सुई किव करे आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आखे एक दू एक सियाणा।

पाताल पाताल लख आगास आगास ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतिबा असलू एक धातु

पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कोड आनंद शर्मखंड की वाणी जो शर्मखंड की वाणी रूप तिथे घाटत घड़िए बहुत अनूप ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कह पिछे पछताए।

प्राण है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनिल है, अनाद है, अजेय है, आजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अला है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्

हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबा हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, प्रेत हैं, उजंग प्रयाचंद नमो सर्वमानी समस्ति निदानी नमो देव देवे अपेकी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद वादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परभंगी परमाते समस्ती विभूते

चूड़ाजराजेश्रुं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपुगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशु धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहसाहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंगि स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानं सर्वं करुणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा

कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा रित सिद्धं निवासी चार पट छंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं।

सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल, जत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग नरे।

मरण बही चक्र बकर फिरे चतर चक मानी पुरती लोक चौदह के बिख जग जापी जे जाप आद देवनाद मूरत थाप्यो सबै जे थाप परम रूप नीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्विश्वरच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म धाम सो भरम रहता भूत अलख अपेश अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अनुष्ट एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप सूत अंगहीन भंग अनात्म एक पुरख पार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार।

प्राण जाक है नित भाखत नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवही वह चित मद पार छंद व प्रसाद गुनगन उदार महिमा अपार आसन अपंग

निर्भय निकाम, अत दुत प्रचंड मितगत अखंड, आलिश्य कर्म आदृश्य धर्म, सर्वा प्रनाड्य अंडंड बाड्य चाचरी छंत्व प्रसाद, गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे, हरियं करियं निर्णामे अकामे, पुजं प्रयात छंद, चत्र चक्र कर्ता चत्र चक्र हर्ता, चत्र चक्र दानी चत्र चक्र जाने, चत्र चक्र वर्ती चत्र चक्र परती, चत्र चक्र पाले चत्र चक्र काले, चत्र चक्र पासे चत्र चक्र वासे, चत्र चक्र माने।

पवित्रय परेहै पवित्रय प्रतिष्ठय अधिष्ठय अदृश्य कृष्य भगवती छन्त्व प्रसाद कथते या चिज देश क्या भिज भिष क्या गंज करमै क्या भंज भरमै के आ भिज लोक के आदित सुख है के अवधूत बरने के विभूत करने के राजम प्रभा है के धर्मंग तुझा है के आसुक बरने के सर्वा अपरन के जगतम कृति है के छत्रंग छत्री है के बर्मंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद अदेव है के आप अपीव है के चित्रंग बहीन है के कै अधीन है फिरोजी रजा कह रही मेरे हा कह के पाक वे अब के गय भूल गय वह कि अफुल गुनाह है कि साहन सा है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांत है कि राजक रहीम है कि कर्मंग करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र भेष है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज्य के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कलिम है कि परमं रहीम है कि अकल आलम है कि साहिब कलाम है कि हुस्नल वजू है तो मामुल रुजू है हमेशल सलाम है सलीकत मुदाम है गनीमुल शिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमा मै रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाए की यकीन है अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल किराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुक्त प्रभा हैं सुजुक्त सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैव अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं उअंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिपादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अचिज है अछूत है कि नरकंग प्रणास है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विभुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी चंद

हैं, उदास हैं, अंध हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाथ हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनित हैं, अलिख हैं, अधिक हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटा हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट चंत्व प्रसाद, सर्वं हंता, सर्वं गंता, सर्वं ख्याता, सर्वं ज्ञाता, सर्वं हर्ता, सर्वं कर्ता, सर्वं प्राणं, सर्वं त्राणं, सर्वं कर्मं, सर्वं धर्मं, सर्वं युक्ता, सर्वं मुक्ता, रसावल चंत्व प्रसाद, नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तात न मात न जात न पात निरसाकं सरी कह अमितो अमी कह सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती चंत्व प्रसाद।

तिन ही प्रपायो काहू लै पाहन पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को शीश निवायो को बतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तहायो पूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न

कह नानक तू सदा गम है तिरंत न पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जन सब तुद उपायक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चुका सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुटा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली चाला निराली भगता तेरी बिख मार्ग चलना। लाभ लोभ अहंकार का तृष्णा बहुत नाही बोलना। खन्हो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना सुमानी। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली ज्यो तू चलाहे तिव चलै स्वामी। होर क्या जाना गुण तेरे जिव तू चलाहे तिवै चलै जिन्ना मार्ग पावे। कर कृपा जिन्ना लाहे से हर हर सदा त्यावे। जिसनु कथा सुनाहे अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे। कह नानक सच्चे साहिब ज्यो पावे तिवै चलावे। एहो सोहेला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहेला। सतगुरु सुनाया एहो तिनकै मन वसिया जिन धुरो लिखिया आया। इक फिरै कन्हेरे करह गल्ला गली किनै न पाया। कह नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहि सो पवित संग सुबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै बिन सहजह सहसा न जाए। नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए। सहसै जीव मलीन है के संजम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागू हर स्यों रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए। जी हो मैले बारहों निर्मल बारहों निर्मल जी हो ता मैले तिन जन्म जुवै हारिया। ए तिसना वड्डा रोग लगा मरन मनो विसारिया। वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिर है ज्यों बेतालिया। कह नानक जिन सत सजिया कूड़े लागे तिन जन्म जुवै हारिया। जी हो निर्मल बारहों निर्मल बारहों ता निर्मल जी हो निर्मल सतगुर ते करनी कमाणी। कूड़ की सोय पहुँचै नाही मनसा सत्समाणी। जन्म रतन जिनी कटिया भले से बनजारे। कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै होवै ता सन्मुख सिख कोई। जी हो रह गुर नाले गुर के चरण हिरदय तिहाई अंतरात्मै समाले। आप चट सदा रह परनै गुर बिन अवर न जानै कोई। कह नानक सुनहो संतो सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते विमुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै। पावै मुक्त न होर्थ है कोई पुछो भवे किया जाए। अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु सब सुनाए। कह नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त न पाए। आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी। बाणी ता गावो गुरु केरी बाणी आसर बाणी। जिनको नदर कर्म हो वै हृदय तिना समाणी। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आक वखाणी। हर हर नित करह रसना कहया कछु न जानी। चित जिनका हिर लिया माया बोलन पैर वाणी। कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ सुमाओ। शब्द सेती मन मिलया सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। शिव सकता आप उपाय कह करता आपे हुक्म वरताए। हुक्म वरताए आवे कह गुरमुख किसे बुझाए। तोड़े बंधन हुवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो हुवै कस्यों लिव लाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जानी। तत्तै सार न जानी गुरु बाजो तत्तै सार न जानी। ते गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुत्या रहण विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिन हर मन वसिया बोलै अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए जिसनु मन दिन हर लिव लागै जागत रहण विहानी। माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है। मनो क्यों विसारी है विड़दाता जे अगन मैं आहार।

खोज शब्द में, राज करेगा खालसा आकी रहना, ख्वार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो।

0: कुंभे पता जल रहे जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान का पता मन रहे
1: गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी।

0: का एकरा सिकृतवा जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी बुझेता है। सात जुगरा संतोख का धर्म गैरथवा त्रे तेरा जते का जोर गैथवा द्वापुरा तपे का सच गिरथवा काल जुगरा सगन का कूड़ गिरथवा महला पहला।
1: शाम कहे से तंबर स्वामी सच में आठ है साच रहे सबको सच समागर कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैसूर

फैल अठ सठ तीर्थ जिन आवे उतरे न ही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब चेती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बात सचे न दरबार ऊपर खर्च मंगा जब देता

काम क्रोध अर लोभ मोह वास करे सब बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नावनिद दरियाओ जनम हम कालख तोवे सो कहो टल गुर सेवी अहनिस

0: पूरे सतगुर दिया दिखाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: गुरु रूप सत्संग जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहला प्रकाश श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के संबंध विच जो 31 राग कीर्तन दरबार उल्लिखिया गया सी, उहदे अज दूजे दिन की शुरुआत दे विच असी संगत कर रहे हाँ। अज दे दीवान अमृत वेले दे दीवान दे विच पहला असी नितनेम जी की पंज बाणियों का पाठ अते सुखमनी साहब जी का पाठ, उहदे उपरंत आसा की वार का कीर्तन, संपूर्ण कीर्तन राग आसा दे विच भाई साहब भाई सिरमनजीत सिंह जी अते उन्हां दे जत्थे पासों श्रवण किया है। भाई साहब होरां दा बहुत बहुत धन्यवाद। हुण उही प्रोग्राम अगे तुरना है असी, जिहड़ा कि कुछ समय लई उह चलेगा, उहदे बाद ब्रेक होएगी, फिर आफ्टरनून फिर शुरू होएगा। उहदा टाइम असी हुण दसदे हां। सतसंगत इस वेले साढ़े संगत दे विच भाई दिलावर सिंह जी शहीद, उन्हां दे माता जी बीबी सुरजीत कौर जी शामिल हन, ते उन्हां नूं गुरद्वारा साहब वालों जी आयां नूं आखते हाँ। ओ आप जी नाल बाहरों कैलगरी तो आए हैं, कैनेडा तो, ते उन्हां नूं ओ एक दो मिनटां लई आप जी नाल आप जी दे दर्शन करन जाणगे। बेनती करते हाँ, सो गुरद्वारा साहब वालों उन्हां नूं सम्मान करन लई मैं भाई साहब नूं कहांगा कि सिरूपा दा सम्मान देंगे।

0: इन्हीं सेवा प्रवान करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा,
1: वाहेगुरु जी की फतेह। सोनी कौर जी बहुत ही सहज नाल शब्द गायन किया, सारे जथेदार मैं बहुत धन्यवादी हाँ। सोनी कौर जी का बेटा संगीत सिंह का भी मैं बहुत धन्यवादी हाँ, जो कि हर वेले इन्हां दे नाल गायन करता है। मनजीत सिंह जी, मेहर कौर, अमन कौर, सारे गुरप्रीत कौर जी, सारे जथे का बहुत धन्यवाद हाँ। हुण सवेर दी इस बस समाप्ति है, पांच घंटे ब्रेक है, दोपहर तो बाद फिर सवा तीन इसे तरह ही कत्ती राग दरबार दा गायन चलता रहेगा। अलग अलग राग जो कि दोपहर के राग हैं, शाम के राग हैं, उन्हों का गायन होएगा। तो सारे अगे बेनती है कि हुम हम आके पहुँचना, दर्शन देने, सारा कीर्तन प्रोग्राम सुनना, कल नू भी हाजरियां भरनी हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सैगम गुरु प्रसाद। जब आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच सोचे सोच न हो गई।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर करता है अशांत काल वत्या कमाए अशांत पापी पाप अशांत मूर्ख आर्य है अशांत मलेच्छ मल पाप है अशांत निंदा।

असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर राम असंख अमर कर जाए असंख गड़बड़ हत्या कमाए संख पापी पाप असंख अनूर यार करे फिर असंख मलेच मल पाए असंख

समुद्र चाहता गिरी कुल नौनी अंत न सुखी कहना अंत न करने देना अंत न देखना।

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत कालवाए संत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे सुधाए संत मलेच मल पाए अशांत निंदक करे नानक नीच कहे क्या मारे न जाना के जो तुझ पावे सही फलिका तू सदा सलाम संत नाम संत नाम राम राम संत दो असंत कहें सिर्फ।

अंतर करती जग मन नाम सब गुरु तेरे मनाई तोरे बिन गुरु की ते मन होए स्वस्थ आकाणी ब्रह्मा सत स्वान करम सो

सुमित तरसी थावती तरुण साथ सुमिति सुगम करके नाम करमी करमी वे विचार जिसे सोहन पंच प्रवान नदरी कर्म सोवे कच्छ खाई उत्थे पाए नानक गया कर्म खंड का एहो

सत्तापुर निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी सच।

सुभाग जोड़ी सरदार मनप्रीत सिंह टिवाणा, सुपुत्र सरदार गुरमुख सिंह टिवाणा, बीबी अमिता कौर टिवाणा अते बच्ची बीबी नवजीत कौर मट्टू, सुपुत्री सरदार अवतार सिंह।

आप जिया ने कृपा बख्शिश मेहरामत की। सतगुरु जी आप जी के पावन पवित्र दरबार अंदर आनंद कारज की मर्यादा नभा सुभाग जोड़ी वालों परिक्रमा करद बाणी सरवण करद बेअंत सूक्ष्म भुला हुई आप जी ने खिमा कर देनी। अगे तो सावधानता बख्शिश करके नवाजना बाणी शुद्ध ते स्पष्ट पढ़न सुनन विचारण दी दात प्रदान करनी। सतगुरु जी रहमत करनी सुभाग जोड़ी दे सदा सिर ते मेहर भरिया हाथ रखना गरीब नवाज एक जोत दोए मूर्ति वाला सुभाव बख्शिश करना रहमता करनिया आपसी प्रेम प्यार इतफाक दी दात बख्शिश करके नवाजना ग्रिस्त धर्म दियां खुशियां खेड़े प्रदान करना ग्रिस्त मार्ग विच गरीब नवाज सदा आप जी ने मार्ग दर्शन करना गुरसिखी जीवन बख्शिश करना अपने चरणा दा प्यार बख्शिश करके नवाजना। सतगुरु जीओ दोहां परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना आपसी प्रेम प्यार इतफाक दी दात बख्शिश करना सेवकां दे कार्ज रास करने। सतगुरु जीओ इस वक्त सुभाग जोड़ी वालों आप जी नूं सुंदर पुशाके भेट कीते गए आप जिया ने अंगीकार करना लोक परलोक विच पड़दे कजना बख्शिश कीते भंडारिया विचों कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजिर है जी दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या होवे। सतगुरु जी बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां तिल फुल भेटावां आप जी के चरणा विच भेटा कीता अते सतगुरु जी गुरु घर दी चल रही कार सेवा दे निमित बेअंत संगतां ने अपने दसा नौहां दियां किरत कमाईयां नूं सफलियां करदियां माया भेटा कीती सभना दियां कमाईयां किरत कमाईयां सफलियां करनियां चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना। सतगुरु जी इस वक्त आप जी कृपा करो पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलण दी मत बुद्ध

अंत मूर्ख अंत घोर अशंत चोर राम अशंत अमर कर जाए अशंत कल वाय संत पापी पाप अशंत कूड़े आर करे फिराए संत मलेश मल पाए अशंत निंदक करे पास नानक नीच कहे जा मारे न जामा के जो सुख पावे सही परिकार सदा सदा मत संत नाम संत नाम राम राम संत लो अच्छा।

तप निर्भौ निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी

वाहेगुरु जी की फतेह। हुण मैं बेनती करदा हां बीबी सोनी कौर जी ते जथा स्टेज ते आ जाण ते शाम दे राग राग तिलंग ते राग जैसरी विच शब्द गायन करनगे। इन्हां दी बेटी दा नाम भी जैसरी है, रागां दे बच्चों के नाम रखे हैं। बड़े बच्चे का नाम संगीत सिंह है, छोटा बच्चा मल्हार सिंह, छोटी बेटी जय